का की बाशिता ठीक पड़े नजरे बोले दी सजरे मांसटा झाल हबे मेटे हबे आशिता কেটে গিয়ে